0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है ये।
3: कुछ इससे भी अनोखा
2: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
4: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.

0: व्यवस्था है और 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति आज एकजुट होकर के देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। आइए खुशियां भी मनाइए, संकल्प कीजिए और संकल्प को सिद्ध करने के लिए मेरे साथ चल पड़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत
1: 7.8% growth, that is the headline number from the first quarter of FY 26-27, and it has also immediately become a political number. You've just heard the Prime Minister say that the GDP numbers are proof of collective strength, that the world is surrounded by crisis and the world is grappling with wars, yet the government is celebrating what Prime Minister Modi is calling a Herculean feat. Meanwhile, the opposition is hitting out. The opposition has categorically said, look beyond the headline, because they are pointing to slower agriculture concerns around manufacturing, jobs, household debt and also private investment. Akhilesh joins us over the phone line with the key takeaways from the Prime Minister's address. Akhilesh, it's over to you.
2: Well, it's very important in the sense that the global situation is not favorable at all. We have seen that how the crude oil prices are rising continuously and the U.S.-Iran tension is not easing up. Despite those challenges, India has managed to get 7.8% growth in the quarter one. That's a big achievement, and Prime Minister Modi just released a message on Instagram saying that there is a celebration among the people of India because of 7.8 growth, but there are challenges. And he also talked about how some people in India are trying to spread negativity. He did not name Rahul Gandhi, but of course Rahul Gandhi, the leader of the opposition, the Lok Sabha, had predicted that Indian economy is collapsing. But despite his prediction and prediction about a doomsday, India has managed to get 7.8% growth rate. He also urged that it is time for self-reliance. He talked about Swadeshi products, that people should buy Indian-made products, and also talked about that how they should avoid going on vacations to foreign and also not to buy gold unless it's necessary. And he promised that if we continue to agree in this speed, we'll be giving a better future and better India to our future generations in 2047.
1: Right. Akhilesh, we're just going to listen to the Prime Minister's remarks once again before we decode matters further with you.
0: Deshwasiyon ko bahut bahut badhai. 7.8% growth. Desh khushiyon se bhar gaya hai. Lekin deshwasiyon ko main badhai deta hoon. Unke sankalp shakti ke liye, unke purusharth ke liye, एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। दूसरी तरफ भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना है, हमें बढ़ना भी है, और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है। स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए, और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुपुर्द करेंगे। हमारी युवा पीढ़ी के सपनों को हम आज अपने परिश्रम से साकार करके रहेंगे, और इसलिए आइए देशवासियों, हम पुरुषार्थ में कोई कमी न रखें। हमारी नीति सही है, हमारी नीयत साफ है, और 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति आज एकजुट होकर के देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी

0: questioning the government on various things. But when data has come to show that Indian economy is growing at this pace, by repeatedly calling that it is a dead economy, it's not questioning the government, it's insulting the people of India. And they should avoid doing that.
1: भारतीय अर्थव्यवस्था को विस्तृत करने के लिए बड़े फैसले लिए गए, कड़े फैसले लिए गए, दूरगामी सोच के साथ में फैसले लिए गए। खाड़ी के देशों में बनी हुई तनाव की स्थिति के चलते हुए पूरी दुनिया ऊर्जा के संकट के दौर से गुजर रही है। तब सभी लोग ये मानते थे, अपेक्षा करते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था भी इस चुनौतीपूर्ण दौर में एक बार दबाव के अधीन आ जाएगी। और मैं ये मानता हूँ कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों की माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास की प्रतीक और विजय का प्रतीक है।
2: GDP growth has nothing to do with the real life of the people of this country. 80%, 90% people of this country, they may be poor people, working people, they may be middle class or upper middle class, but there is no reflection. They are all positive. It is not only the downtrodden people, even the middle class, upper middle class, they are also facing lot of problems, difficulties. They find it very, very difficult to pass each day. So that it has nothing, the GDP and the real life of people has no correlation. So people are realizing it. So people are ready for a badlav, and we are taking the lead for that.
3: Congress can speak whatever it wants, but the headline numbers expose the Congress party's jhoot ki goonj, because the truth is that the manufacturing is up by 9.2%, investment up by 11.9%, services up by 10%, and India in an environment of global headwinds is the fastest growing major economy with 7.8%. So the Congress can live in its own pessimistic narrative, but the youth of the country has exposed the Congress party by contributing and making India the fastest growing economy with 7.8%. I believe today Rahul Gandhi owes an apology to the people of the country, particularly to the youth of the country, for calling the Indian economy as dead.
4: Prime Minister आंकड़ों के बाजी कर रहे हैं, वो आंकड़े जारी करते रहते हैं, लेकिन ये जब आप 7.8% की ग्रोथ रेट आप बता रहे हैं, उसके बावजूद भी देश के अंदर ना तो रोजगार जनरेट हो रहा है, लोग बेरोजगारी से परेशान है, और ना देश के अंदर महंगाई कंट्रोल हो पा रही है। ये इतनी जीडीपी होने के बाद हमारे जो इकोनॉमी का आकार है, वो इकोनॉमी का आकार जो आपने 5 से 10 साल पहले घोषणा की थी कि मैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर दूंगा, तो 5 ट्रिलियन तो अभी भी नहीं पहुंच पाया। जब आपको सत्ता सौंपी गई थी, तब सत्ता सौंपते हुए हमने 2.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी आपको दी थी, आज आप 3.92 ट्रिलियन पर लेकर आए, और थोड़ा सा आपने जो आंकड़े जारी किए, थोड़ा सा और बढ़ गया, यानी दुगने के करीब भी आप पहुंच नहीं पा रहे हो, और आप ट्वीट किस बात के लिए तपा रहे हो अपनी? ये जीडीपी आभासी है, ये जो दिखाई दे रही है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों बड़े जो डेवलप से दिखाई दे रहा है, एमएसएमई सेक्टर के अंदर पूरी तरह से तबाह, वो भी रोजगार जनरेट करेगा। ये आप जो दिखा रहे हो आंकड़े, इन आंकड़ों से देश को कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए, देश को वास्तविक रूप में जब तक बच्चों को नौकरी ना मिले, नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, तब तक कैसे चलेगा कि देश तरक्की कर रहा है?
5: सी, एज फार एज नरेंद्र मोदी जी इज कंसर्न, ही इज लीडिंग ओनली 1% ऑफ द पॉपुलेशन व्हेन ही टॉक्स अबाउट द जीडीपी एंड द ग्रोथ। द रियलिटी इज इन 2025 द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज अराउंड 4%, नाउ इट हैज गॉन अप टू 17.7%, and he is claiming that everybody is happy and they are creating jobs. This is called as a gated recession in economic terms. So few people, only 1 or 2% people, that they are growing. It's not a K shape. I don't know whether there is a I shape growth is given in economic terms or not, but new terms can be developed. That is I shape. Only 1% of the people they are growing. That does not mean that India is growing. You see, today the prices of milk has gone up by 9 rupees. There are 12 states in India which has received 20 to 58% less rainfall in India. So these things and the reality doesn't match with what our ghost story is saying about the GDP. Do you think that it really matches with the ground reality?
6: News just coming in. The Indigo Goa Delhi flight has returned to the airport after mid-air engine snag forced full emergency.

0: protocols. According to sources, Indigo flight 6E2102 took off from Goa for Delhi on Tuesday morning, but shortly afterward, one of the plane's engines was reported to be malfunctioning. The plane subsequently made an emergency landing at a Goa airport. Tanushka joining me live. Tanushka, what are the details you can share with us on this emergency landing?
1: Right, Vedika, what we've been given to understand is this Indigo flight was departing from Goa toward Delhi and it had to return, make a U-turn mid-air after an engine snag forced the aircraft and the airport into full emergency. As per sources, what we've been given to understand is that this Indigo flight 6E2102 took off from Goa to Delhi this morning, but shortly afterward, one of the plane's engines was reported to be malfunctioning, and after that, the pilot made, you know, an informed decision and on the spot decided to come back and retreat back to the Goa airport and made a safe landing at the airport. Indigo's also put out a statement and has said that the aircraft is currently undergoing maintenance checks and will resume operations after securing all necessary clearances. They've also said that they've made alternative arrangements for the customers to reach their destination here on. So basically, at this point, this is concerning that there was an engine snag with respect to this particular flight. What exactly happened with respect to the engine? We understand there was a mid-air snag. And after this, the aircraft has been grounded and is undergoing investigation to understand what really went down. Back to you.
0: All right, Tanushka, thanks for joining us live there on that breaking story. We have more news coming in, this time from Dehradun. Congress's massive stir continues in Dehradun. Protesters are protesting against the FIR against Rahul Gandhi. They've breached a barricade as well, and they're clashing with the police. This FIR protest is against the FIR against Rahul Gandhi over his Shuddhikaran remarks. I have Kishore joining me live, Kishore Rawat, on the story. Kishore, we believe that the Congress supporters have already broken a barricade. Can you take us through what's happening at the ground where the protest is taking place? Kishore, if you can hear me, can you just tell us what's happening behind you at the protest site? All right, we're going to try and reconnect with Kishore there. Kishore, if you can hear me, I'm going to be a bit louder now. I know there are a lot of people behind you, but there's a protest that is taking place. Congress supporters there, they've broken a barricade. Just take us through the details.
2: कांग्रेस का यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है और ये देख सकते हैं कि आपके तमाम जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं. अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने पुलिस के साथ इनकी काफ़ी झड़प हुई थी और बैरिकेड्स तोड़कर ये आगे उन्होंने बैरिकेड्स पे कब्जा करा था. इनकी दो डिमांड है, एक तो राहुल गांधी पर जो मुकदमा है उसको कैंसिल किया जाए और शुद्धिकरण के मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए. कांग्रेस ने कल सोमवार को लगभग 123 जगह यानी कोतवाली और थाने में वहाँ पर जाके एप्लीकेशंस दी थी और मुकदमा दर्ज करने की बात करी थी. ये तमाम लोग हैं, मैं जानता हूँ आप यहाँ पर डिमांड लेके आए, आपकी क्या डिमांड है लगातार और प्रदर्शन कितना चलेगा?
3: देखिए, राहुल गांधी जी ने दलितों के सम्मान की बात करी, दलितों के मान की बात करी, उनके अधिकारों की बात करी. जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिस जगह से जनसभा को संबोधित करने का कार्य कर रहे थे, वहाँ को शुद्धिकरण वहाँ का किया गया, जो कि एक दूसरा रूप है छुआछूत का. तो यही क्रम में आज हम यहाँ मांग लेके आए हैं कि FIR दर्ज की जाए.
2: बिल्कुल सामने हरक सिंह रावत है जो बैरिकेड तोड़कर आगे चले गए थे, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, क्योंकि अभी उनकी स्थिति काफी खराब चल रही है.
4: हॉस्पिटल
2: ये रावत जी है, रावत जी क्या हुआ आगे, आप बैरिकेड तोड़ के चले गए थे?
5: देखिए, ये जिस तरह पुलिस के दबाव में, पुलिस मुख्यमंत्री के दबाव में जिस तरह विपक्ष की आवाज, राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है.
2: अभी तबीयत कैसी है आपकी? अभी तबीयत तबीयत का क्या हाल? इस वक्त ये आप देख सकते हैं कि हरक सिंह,
5: देखिए
6: थोड़ा
7: छोड़ो, पीछे
6: बंद है, थोड़ा आगे को ले चलो.
2: प्रदर्शनकारियों में हरक सिंह रावत आगे, जो कि इस वक्त चुनाव संचालन समिति यानी चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष है, और वो बैरिक तोड़कर आगे गए थे। उनकी हालत अभी काफी खराब है।

0: हम लोग जो है लगातार यहाँ पर जो लोग अंदर रह गए हैं उनको उनसे सबसे अपील की जा चुकी है, मोस्टली लोग बाहर भी आ गए हैं। अभी एक बार हम लोग फिर से इसको चेक करने जा रहे हैं, अगर कोई अंदर में है तो उनको हमारे यहाँ रैन बसेरा बनाया गया है आश्रय स्थल, वहाँ पर ला करके रेस्क्यू किया जाएगा ताकि उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए और इस पूरे बाढ़ से सभी को अलग कर लिया जाएगा ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि न होने पाए।
1: जानकारी है कितने लोग अंदर हैं कुछ ऐसा?
0: अभी तो हम लोग 4 बजे से पानी बढ़ना शुरू हुआ है, तब से लगातार हमारी टीम और हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं तो ज़्यादातर लोग निकल गए हैं। अभी प्रिकॉशनरी एक बार हम लोग फिर से चेक करने जा रहे हैं, अगर किसी कारण से कोई छूटा होगा तो उनको यहाँ से ला करके हम लोग अपने रैन बसेरे में सुरक्षित करें।
1: रेस्क्यू बोट्स जो हैं वो तैयार कर ली गई हैं और NDRF की टीम आगे जाएगी, जो लोग अंदर अगर हैं तो उनको वापस लाया जाएगा और ये अनाउंस भी किया जाएगा कि आप इसके आसपास ना रहें। हालांकि अधिकतर लोग पहले से ही बाहर आ चुके हैं, सुबह 4 बजे से जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ और ये जलस्तर बढ़ते बढ़ते सड़क तक आ चुका है।
2: Slipping to short break, I'll be back with the headlines and top stories here on Breaking Ground in moments from now. Stay tuned.

0: देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है। उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। दूसरी तरफ भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना है, हमें बढ़ना भी है, और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है। स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी विवाह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए, और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे। हमारी युवा पीढ़ी के सपनों को हम आज अपने परिश्रम से साकार करके रहेंगे, और इसलिए आइए देशवासियों, हम पुरुषार्थ में कोई कमी न रखें। हमारी नीति सही है, हमारी नीयत साफ है, और 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति आज एकजुट होकर के देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। आइए खुशियां भी मनाइए, संकल्प कीजिए, और संकल्प को सिद्ध करने के लिए मेरे साथ चल पड़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
1: ऑपोजिशन पार्टीज, particularly the Indian National Congress and its leader, Shri Rahul Gandhi, look at the facts, look at the numbers, and do not insult the people of India by calling India a dead economy. You are the opposition, and the party in opposition is absolutely right in questioning the government on various things. But when data has come to show that Indian economy is growing at this pace, by repeatedly calling that it is a dead economy, it's not questioning the government, it's insulting the people of India, and they should avoid doing that.
2: जब भारतीय अर्थव्यवस्था को विस्तृत करने के लिए बड़े फैसले लिए गए, कड़े फैसले लिए गए, दूरगामी सोच के साथ में फैसले लिए गए, खाड़ी के देशों में बनी हुई तनाव की स्थिति के चलते हुए पूरी दुनिया ऊर्जा के संकट के दौर से गुजर रही है, तब सभी लोग ये मानते थे, अपेक्षा करते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था भी इस चुनौतीपूर्ण दौर में एक बार दबाव के अधीन आ जाएगी। और मैं ये मानता हूँ कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों की, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास की प्रतीक और विजय का प्रतीक है।
3: अगर GDP बढ़ गया है तो महंगाई कैसे बढ़ रही है, रुपया कैसा नीचे गिर रहा है 89 रुपये तक, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, 85 करोड़ 85 करोड़ लोगों को 10 किलो मुफ्त राशन में क्यों जीना पड़ रहा है, उसका जवाब भी देना चाहिए ना। GDP बढ़ा दिखना तो चाहिए ना, क्या बढ़ गया हो, लोगों को नौकरी नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है, लोगों को कपड़ा नहीं है, लोगों को मकान नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हो।
4: Growth has nothing to do with the real life of the people of this country. 80%, 90% people of this country, they may be poor people, working people, they may be middle class or upper middle class, but there is no reflection. They are all past. It is not only the downtrodden people, even the middle class, upper middle class, they are also facing lot of problems, difficulties. They find it very, very difficult to pass each day. So that it has nothing, the GDP and the real life of people has no correlation. So people are realizing it. So people are ready for a badlav, and we are taking the lead for that.
5: Congress can speak whatever it wants, but the headline numbers expose the Congress party's jhoot ki goonj. Because the truth is that the manufacturing is up by 9.2%, investment up by 11.9%, services up by 10%, and India in an environment of global headwinds is the fastest growing major economy with 7.8%. So the Congress can live in its own pessimistic narrative, but the youth of the country has exposed the Congress party by contributing and making India the fastest growing economy. Only with 7.8%. I believe today Rahul Gandhi owes an apology to the people of the country, particularly to the youth of the country, for calling the Indian economy as dead.
6: Prime Minister आंकड़ों के बाजी कर रहे हैं, वो आंकड़े जारी करते रहते हैं. लेकिन ये जब आप 7.8% की growth rate आप बता रहे हैं, उसके बावजूद भी देश के अंदर ना तो रोजगार जनरेट हो रहा है, लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, और ना देश के अंदर महंगाई कंट्रोल हो पा रही है. ये इतनी जीडीपी होने के बाद हमारे जो इकोनॉमी का आकार है, वो इकोनॉमी का आकार जो आपने 5 से 10 साल पहले घोषणा की थी कि मैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर दूंगा, तो 5 ट्रिलियन तो अभी भी नहीं पहुंच पाया. जब आपको सत्ता सौंपी गई थी, तब सत्ता सौंपते हुए हमने 2.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी आपको दी थी. आज आप 3.92 ट्रिलियन पर लेकर आए, और थोड़ा सा आपने जो आंकड़े जारी किए, थोड़ा सा और बढ़ गया, यानी दुगने के करीब भी आप पहुंच नहीं पा रहे हो. और आप ट्वीट किस बात के लिए तपा रहे हैं अपनी? ये जीडीपी आभासी है, ये जो दिखाई दे रही है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों बड़े जो डेवलप से दिखाई दे रहा है, एमएसएमई सेक्टर के अंदर पूरी तरह से तबाह, वही रोजगार जनरेट करेगा. ये आप जो दिखा रहे हो आंकड़ों से देश को कुछ नहीं मिल रहा है. देखिए, देश को वास्तविक रूप में जब तक बच्चों को नौकरी ना मिले, नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, तब तक कैसे चलेगा कि देश तरक्की कर रहा है?
7: सी, एज फार एज नरेंद्र मोदी जी इज कंसर्न, ही इज लीडिंग ओनली 1% ऑफ द पॉपुलेशन व्हेन ही टॉक्स अबाउट द जीडीपी एंड द ग्रोथ. द रियलिटी इज इन 2025 द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज अराउंड 4%, नाउ इट हैज गॉन अप टू 17.7%, and he is claiming that everybody is happy and they are creating jobs. This is called as a gated recession in economic terms. So few people, only 1 or 2% people, that they are growing. It's not a K shape. I don't know whether there is a I shape growth is given in economic terms or not, but new terms can be developed, that is I shape. Only 1% of the people they are growing. That does not mean that India is growing. You see, today the prices of milk has gone up by 9 rupees. There are 12 states in India which has received 20 to 58% less rainfall in India. So these things and the reality doesn't match with what our growth story is saying about the GDP. Do you think that it really matches with the ground reality?
8: My colleague Aishwarya now joins me live from the national capital. Aishwarya, you have the BJP saying the numbers speak for themselves, enough to silence the opposition. The opposition saying, while you're giving us these numbers for the first quarter, we want to understand why are employment and inflation figures, so high in terms of inflation and so low in terms of employment.
9: A huge war of words erupted after the numbers that have come out as far as the quarter one GDP growth is concerned. Prime Minister Narendra Modi clear hailing numbers and also thanking the entire country for such a tremendous growth that the country has witnessed. While on the other side, the Congress party clearly describes it as an unreality, something that has not transpired on the ground. The people are not very much happy, and how the joblessness, the unemployment is growing and has not been transferred to the common person. The Congress party clearly saying that this GDP number clearly have only helped the top people who are sitting and not transferred to the ground. Perhaps the Prime Minister Modi had clearly stated that these are just not mere headlines that have frustrated the Congress party or the party leader, who had stated once that this Indian economy is dead. This numbers clearly transpires the real picture as far as the economic growth is concerned, and also Prime Minister urging India to have self-reliance, Bharat, the Atmanirbhar Bharat, that's the

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी।

0: has a blanket, a pillow cover, a bed sheet, and a mattress, because people need supplies there more.
1: Nepal is now confronting the devastating cost of the floods and the lives lost, homes destroyed, and critical power infrastructure that has been wiped out. As rescue efforts continue, the scale of destruction is becoming clearer, and so is the long road to rebuilding.
2: The body of a child, perhaps 5 or 6 years old, being pulled out of the ruins of this home. It's a heartbreaking scene being reported over and over in front of our eyes, wherever we go. This is Ground Zero at Devi Ghat, where the extent of death and devastation is becoming clearer by the hour.
3: In Devi Ghat, the stench of death is overpowering. It could be livestock. There have been bodies of people who've been recovered in the last half an hour or so, is what we are told. But digging through the basements of all of these homes, getting out bodies, it becomes a serious healthcare risk as well at a certain stage. And that's the big concern also, shouldn't be forgotten. Several days have now passed, and decomposing bodies of livestock, of people, that poses a serious health risk, something which authorities over here would be alert to.
2: As I walk through the ruins of this village, I meet a man who takes me to what was his restaurant.
4: Me idhari tha, hamara bachcha, 3 bachche, aur bibi aur me. Sab bach gaye 2 minute se. 2 minute aage kam ho gaya tha, to marta tha. Aawaz bahut bada aaya, gding gding gding karke, aur to hum log bachche ko bhagaya. मतलब खुद दुकान छोड़ के भाग गए हम लोग, कुछ भी नहीं निकला, खाली हाथ निकल गए।
3: और आपका मकान, आप कह रहे थे कि कुछ है ही नहीं?
4: नहीं, वो क्लीन है वो मकान,
3: मतलब ये वाला क्लीन है?
4: वो क्लीन है।
3: तो अब आपका कुछ बचा?
4: कुछ नहीं हमारे
3: तो अब क्या करोगे आप?
4: रोजगारी की तरस में जाने वाला है, अब किधर जाएंगे, क्या खाएंगे, किधर बैठेंगे, ऐसे सोच रहा हूँ।
2: Who will help build these homes? The lives of the countless families who've lost everything, loved ones, jobs, and even hope. The economic impact of what has happened is staggering. These are the remains of a solar power plant in Buttar, a short distance away from Devi Ghat. Located near the Trishuli River, which broke its banks last week, it's just one of several power plants that have been wiped out. Walking across the thick mud that's covered this area is a constant hazard.
3: On the banks of the Trishuli, this solar power plant, as it were, is almost completely destroyed. There are literally hundreds of solar panels which have been obliterated, destroyed by the force of the waters. It's not just that these panels have been lifted away. The force can be seen by the fact that all of these are twisted. Many of them have broken apart. This is just one example of a power plant. This is a small one, but one example of a power station which has been badly impacted by the raging waters of the Trishuli.
2: Further north, there are desperate rescue efforts on at run-of-the-river Heidel power projects. Indian, Nepali and Chinese tunneling experts have deployed across the region amidst reports that hundreds may be trapped inside. The flash flood along the Lendekhola, Bhotekoshi and Trishuli river systems directly affected at least 12 power generation facilities. This has knocked out nearly 430 megawatts of electricity capacity. The damage has shrunk Nepal's export surplus, but has not made Nepal a net importer of power at the moment. The cost, however, to rebuild infrastructure, from homes to roads to bridges and power plants, is staggering.
5: The next phase is early recovery, you know, temporary shelter, temporary, you know, cash for work, etc. You know, that has to be a priority. But the daunting task over the medium term is, as you can see, is reconstruction. And that's what we're focused on.
2: As the mud hardens over what remains of these riverbanks, the true cost of this tragedy becomes painfully clear. It's not measured in megawatts lost or infrastructure to rebuild, but in the shattered lives of those who've lost everything. From the ruins of Devi Ghat to the buried power plants, Nepal faces a long, painful road to recovery. For a nation built on resilience, the ultimate test is no longer just rescue, it's giving back hope to the broken. With Sheikh Momin, Vishnu Shom for NDTV.
1: He's holding a press conference on the figures that have just been reported on the GDP.
6: क्या क्या बोलते हैं वो और किस सफाई से झूठ बोलते हैं वो आज इसके कुछ हम प्रमाण उनके शब्दों में दिखाना चाहते हैं जरा सुनिए आप प्लीज गो अहेड
7: लाइट्स ऑफ
6: लुक एट
8: लुक एवरीबॉडी नोस दिस एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड the finance minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that...
7: Next.
6: हो गया? जी. क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है? भारत की आर्थिक स्थितियों के महान जानकार राहुल गांधी ने क्या क्या ज्ञान दिया है पिछले कई महीनों में इंडियन इकोनॉमी विल बी ए डेड इकोनॉमी ए बिग आर्थिक सुनामी इज कमिंग राहुल गांधी जी आपके शब्दों को आज हमने रख दिया और 7.8% ग्रोथ रेट सामने में है कुछ शर्म है आप में क्या मैं तो हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते राहुल गांधी चीट स्पीड पर चलते हैं कोई लिख के दे दिया बोल देते हैं इन इकोनॉमी द डेड इकोनॉमी और मैं और आज जिम्मेवारी के साथ एक बात और कहूंगा भले वो एलओपी हैं लेकिन राहुल गांधी को देश की आर्थिक और अर्थव्यवस्था की कोई जानकारी नहीं है Mr. Rahul Gandhi is bereft of any understanding of economic management and economic development. तो कोई लिख के देता है तो बोल देते हैं भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है ऐसी मार पड़ेगी कि देखिएगा आप मैं तो उन शब्दों को कह नहीं सकता ना और आर्थिक सुनामी आने वाली है राहुल गांधी कुछ मतलब समझते हैं आप एलओपी है ना इन शब्दों के बोलने से इंटरनेशनल इंपैक्ट होता है ना लेकिन शायद दुनिया भी समझ गई है कि राहुल गांधी हल्का बोलते हैं उनको सीरियसली नहीं लेते लेकिन एक देश उनकी सारी टिप्पणी से बहुत प्रभावित रहता है उस देश का नाम है पाकिस्तान जो उनके सारे इस तरह के कमेंट को उठाकर दिखाता है कि एलओपी इज स्पीकिंग अबाउट द शैबी स्टेट ऑफ इंडियन इकॉनमी फिर कहूंगा राहुल गांधी को शर्म है आपको आपको मोदी जी नहीं चाहिए आपको बीजेपी से नफरत है आप रोज आरएसएस को गाली पढ़ते हैं तो क्या मोदी जी से नफरत बीजेपी आरएसएस को गाली करते करते आप देश को भी गाली दे रहे हैं इंडियन इकोनॉमी इज ए डेड इकॉनॉमी ये उनके शब्द आपने सुने सुनामी आने वाली है तो आप भारत को दूस एक प्रकार से कलंकित कर रहे हैं राहुल गांधी जी आपके इस झूठ के आधार पर भारत को कलंकित करने के कुत्सित प्रयास की भारतीय जनता पार्टी भर्त्सना करती है द बीजेपी कंडेम्स आउटराइट द इररिस्पॉन्सिबल फॉल्स बेसलेस एंड मिसचीवियस कंटेंशन ऑफ राहुल गांधी इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकॉनमी एंड अ बिग आर्थिक सुनामी इज गोइंग टू कम सच्चाई सामने आ गई कि 7.8% ग्रोथ रेट वर्ल्ड का हाईएस्ट तो वैसे राहुल गांधी समझेंगे तो नहीं आप जानते हैं तो देश
1: बीजेपी टेकिंग ऑन द कांग्रेस स्पेसिफिकली राहुल गांधी ऑन द रोबस्ट जीडीपी फिगर्स वी विल हैव टू लीव इट एट दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी।

0: Renew clean energy humse hai.
1: Across the country,
2: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।
2: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
5: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.
6: All right, it's day 7 of the rescue operation in Nepal, and at this stage the numbers alone tell you how enormous this disaster is. More than 900 people are dead, more than 4,000 people are still missing as we speak, and over 10,000 have been rescued, but the search is continuing across some of the worst hit areas, including tunnels.
7: Welcome back. India's first quarter GDP has grown at a robust 7.8%. Prime Minister Modi says the strong GDP numbers are proof of India's collective strength, even as the world remains surrounded by crisis and grapples with wars. Taking a swipe, Prime Minister Modi said doomsayers were doomed while India bloomed yet again. He also hit out at those spreading negativity and what he described as jhoot ki goonj, saying India has continued to grow despite the negativity. Congress has raised concerns over slow agricultural growth, a manufacturing slowdown, jobs and rising debt. India's economy grew by 7.8% in April-June quarter of FY27, exceeding expectations. This growth rate positions India as the world's fastest growing major economy. We have reactions and statements coming in. Take a look.
8: Deshwasiyon ko bahut bahut badhai. 7.8% growth. देश खुशियों से भर गया है, लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए. एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है. दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है. 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है. उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है. दूसरी तरफ भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं. इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है. हमें इस गति को बनाए रखना है, हमें बढ़ना भी है, और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है. स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल. विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए. शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए. मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए, और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए. हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुपुर्द करेंगे। हमारी युवा पीढ़ी के सपनों को हम आज अपने परिश्रम से साकार करके रहेंगे। और इसलिए आइए देशवासियों, हम पुरुषार्थ में कोई कमी न रखें। हमारी नीति सही है, हमारी नीयत साफ है और 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति आज एकजुट होकर के देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। आइए खुशियां भी मनाइए, संकल्प कीजिए और संकल्प को सिद्ध करने के लिए मेरे साथ चल पड़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
9: ऑपोजिशन पार्टीज, पर्टिकुलरली द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स लीडर श्री राहुल गांधी, लुक एट द फैक्ट्स, लुक एट द नंबर्स एंड डू नॉट इंसल्ट द पीपल ऑफ इंडिया by calling India a dead economy. You are the opposition and the party in opposition is absolutely right in questioning the government on various things. But when data's come to show that Indian economy is growing at this pace, by repeatedly calling that it is a dead economy, it's not questioning the government, it's insulting the people of India. And they should avoid doing that.
10: से भारतीय अर्थव्यवस्था को विस्तृत करने के लिए बड़े फैसले लिए गए, कड़े फैसले लिए गए, दूरगामी सोच के साथ में फैसले लिए गए। खाड़ी के देशों में बनी हुई तनाव की स्थिति के चलते हुए पूरी दुनिया ऊर्जा के संकट के दौर से गुजर रही है। तब सभी लोग ये मानते थे, अपेक्षा करते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था भी इस चुनौतीपूर्ण दौर में एक बार दबाव के अधीन आ जाएगी। और मैं ये मानता हूँ कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों की माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास की प्रतीक और विजय का प्रतीक है।
11: अगर जीडीपी बढ़ गया है तो महंगाई कैसे बढ़ रही है, रुपया कैसा नीचे गिर रहा है 89 रुपये तक, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, 85 करोड़ लोगों को 10 किलो मुफ्त राशन में क्यों जीना पड़ रहा है, उसका जवाब भी देना चाहिए ना। जीडीपी बढ़ा दिखना तो चाहिए ना, क्या बढ़ जाए हो, लोगों को नौकरी नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है, लोगों को कपड़ा नहीं है, लोगों को मकान नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हो।
12: मुझे बताइए ये 7.8 जो बोल रहे हैं, बहुत बड़ा सेक्टर, इस देश का सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है, एग्रीकल्चर, उसको क्या लाभ हो रहा है 7.8 का, इसका जवाब दीजिए। सबसे बड़ी डेमोग्राफी इस देश की नौजवान की है, यूथ की है, उनको क्या लाभ हो रहा है, क्या उनके मुद्दे हल हो गए, क्या दूध की कीमतें कम हो गई, क्या मुफ्त राशन देने की अब जरूरत नहीं रही, क्या रोजगार का 45 साल का रिकॉर्ड वापस दुरुस्त कर दिया आपने, क्या मैन्युफैक्चरिंग वापस से पटरी पर आ गई, क्या हुआ एमएसएमई सेक्टर का, क्या हुआ असंगठित क्षेत्र का, क्या हुआ। अगर इस सब का जवाब आपके पास है कि हाँ पॉजिटिव है, तब हम भी तालियां बजा देंगे।
13: GDP growth has nothing to do with the real life of the people of this country. 80%, 90% people of this country, they may be poor people, working people, they may be middle class or upper middle class, but there is no reflection. They are all past. It is not only the downtrodden people, even the middle class, upper middle class, they are also facing lot of problems, difficulties. They find it very, very difficult to pass each day. So that it has nothing, the GDP and the real life of people has no correlation. So people are realizing it. So people are ready for a badlav and we are taking the lead for that.
14: Congress can speak whatever it wants, but the headline numbers expose the Congress party's jhoot ki goonj, because the truth is that the manufacturing is up by 9.2%, investment up by 11.9%, services up by 10%, and India in an environment of global headwinds is the fastest growing major economy with 7.8%. So the Congress can live in its own pessimistic narrative, but the youth of the country has exposed the Congress party by contributing and making India the fastest growing economy
7: Breaking updates, the Cockroach Janata Party has called off its September 5 protest in the national capital. That's the big breaking update. Stir was called off after center gave assurances to the Cockroach Janata Party members. So that's the big breaking update. CJP calling off the September 5 protests. In fact, CJP had proposed a protest march from India Gate to police headquarters on Jai Singh Marg near Jantar Mantar on September 5. In fact, security had been stepped up ahead of these protests. But now the latest we are picking up is that after assurances were given by the centre, now CJP has decided to call off this.

0: नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे। हमारी युवा पीढ़ी के सपनों को हम आज अपने परिश्रम से साकार करके रहेंगे और इसलिए आइए देशवासियों, हम पुरुषार्थ में कोई कमी न रखें। हमारी नीति सही है, हमारी नीयत साफ है और 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति आज एकजुट होकर के देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। आइए खुशियां भी मनाइए, संकल्प कीजिए और संकल्प को सिद्ध करने के लिए मेरे साथ चल पड़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
1: ऑपोजिशन पार्टीज, पर्टिकुलरली द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स लीडर श्री राहुल गांधी, लुक एट द फैक्ट्स, लुक एट द नंबर्स एंड डू नॉट इंसल्ट द पीपल ऑफ इंडिया by calling India a dead economy. You are the opposition and the party in opposition is absolutely right in questioning the government on various things. But when data has come to show that Indian economy is growing at this pace, by repeatedly calling that it is a dead economy, it's not questioning the government, it's insulting the people of India. And they should avoid doing that.
2: भारतीय अर्थव्यवस्था को विस्तृत करने के लिए बड़े फैसले लिए गए, कड़े फैसले लिए गए, दूरगामी सोच के साथ में फैसले लिए गए। खाड़ी के देशों में बनी हुई तनाव की स्थिति के चलते हुए पूरी दुनिया ऊर्जा के संकट के दौर से गुजर रही है, तब सभी लोग ये मानते थे, अपेक्षा करते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था भी इस चुनौतीपूर्ण दौर में एक बार दबाव के अधीन आ जाएगी। और मैं ये मानता हूँ कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों की माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास की प्रतीक और विजय का प्रतीक है।
3: अगर जीडीपी बढ़ गया है तो महंगाई कैसे बढ़ रही है, रुपया कैसा नीचे गिर रहा है 89 रुपये तक, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, 85 करोड़ 85 करोड़ लोगों को 10 किलो मुफ्त राशन में क्यों जीना पड़ रहा है, उसका जवाब भी देना चाहिए ना। जीडीपी बढ़ा दिखना तो चाहिए ना, क्या बढ़ जाए हो, लोगों को नौकरी नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है, लोगों को कपड़ा नहीं है, लोगों को मकान नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हो।
4: मुझे बताइए ये 7.8 जो बोल रहे हैं, बहुत बड़ा सेक्टर, इस देश का सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है, एग्रीकल्चर, उसको क्या लाभ हो रहा है इस 7.8 का, इसका जवाब दीजिए। सबसे बड़ी डेमोग्राफी इस देश की नौजवान की है, यूथ की है, उनको क्या लाभ हो रहा है, क्या उनके मुद्दे हल हो गए, क्या दूध की कीमतें कम हो गई, क्या मुफ्त राशन देने की अब जरूरत नहीं रही, क्या रोजगार का 45 साल का रिकॉर्ड वापस दुरुस्त कर दिया आपने, क्या मैन्युफैक्चरिंग वापस से पटरी पर आ गई, क्या हुआ एमएसएमई सेक्टर का, क्या हुआ असंगठित क्षेत्र का, क्या हुआ। अगर इस सब का जवाब आपके पास है कि हाँ पॉजिटिव है, तब हम भी तालियां बजा देंगे।
5: Growth has nothing to do with the real life of the people of this country. 80%, 90% people of this country, they may be poor people, working people, they may be middle class or upper middle class, but there is no reflection. They are all positive. It is not only the downtrodden people, even the middle class, upper middle class, they are also facing lot of problems, difficulties. They find it very, very difficult to pass each day. So that it has nothing, the GDP and the real life of people has no correlation. So people are realizing it. So people are ready for a badlav and we are taking the lead for that.
6: Well, news now from Karnataka, where the BJP is taking out a padyatra against the DKS government there. The padyatra is against graft under the DKS government. The BJP has launched a 10-day padyatra. Now, DK Shiv Kumar has hit out at the BJP. The chief minister has said, we will show them what we're capable of. Let them do the padyatra. Let them start. Let's take a look at the reactions.
0: Oh.
7: Our Padayatra is not a political gimmick. Our Padayatra is a sincere effort. It's a sincere effort by Bharatiya Janata Party to expose this corrupt and anti-people Congress government. So Bharatiya Janata Party, we have decided we have to hit the streets, we have to attack this Congress, we have to expose this Congress government, and we should ensure this corrupt anti-people, anti-farmer and anti-Dalit Congress government should be rooted out in next assembly election. This is the main agenda.
8: ಅವ್ರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಮ್ದು ಏನು ಯಾತ್ರೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರು ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ವಾ, ನಾವು ಏನೋ ಅವ್ರ
6: All right, so that Pad Yatra, it is a 10-day Pad Yatra that the BJP has launched against the DKS government. And this is to protest corruption and graft under DK Shivkumar. Now, the Chief Minister also very combative there. He says that we will show them what we're capable of, hitting out at the BJP over this Pad Yatra, saying let them go ahead and do this Pad Yatra, let them start. So the BJP there highlighting corruption and graft under DK Shivkumar in Karnataka, and taking out a 10-day Padyatra, during which time they will create more outrage over this and speak to people and draw attention to what is taking place there in Karnataka. And that is what the BJP is saying, that we just heard what B.Y. Vijendra said. As he said, the BJP is taking out this march, this Padyatra in Karnataka. So on the warpath really against the DK Shivkumar government, though DK Shivkumar himself does not look very perturbed by this, saying that let them go ahead and we'll show them what we are capable of.

0: Welcome back, and it's day 7 of Nepal rescue operations. The flash floods disaster has now claimed over 900 lives lost, with the toll rising by the hour, and many fear trapped in tunnels as well. Well, more than 4,000 people are still missing after flash floods tore through several districts. Rescue teams say over 10,000 people have been pulled out so far. The disaster has spilled across the border as well, with 16 dead and over 550 missing in Tibet. Among the missing in Nepal are more than 590 foreigners. Meanwhile, the tunnel rescue operation continues in Chilme and Latang. India's ambassador to Nepal, Naveen Srivastava, says that the Nepali forces have now probed 185 meters into the tunnel and rescue efforts are continuing. So far, India has airlifted over 68.5 tons of aid, deploying an 18-member tunnel rescue team, and is also helping build 42 Bailey bridges. And well, NDTV's team is on ground zero. NDTV was the first channel on the ground, bringing you the latest visuals and updates from the heart of the disaster. Our reporters are tracking the devastation and the rescue effort. Take a look at all these ground reports.
1: I'm in Nuwakot district of Nepal, and on Wednesday, when the flash flood came to this area, dozens of bridges as well as hanging bridges collapsed in the water, and now the area on both sides of Trishuli River has been disconnected. So a temporary measure for the local people has been made, and you can see this is a temporary hanging bridge which is made of ropes and iron stick. So these people from the local administration, they are trying to create a base, and this temporary trolley, this will be a temporary arrangement for the local people to cross Trishuli River. I'll show you some footages that this is the rope which is going to the another side of this Trishuli River, and people, they are standing there, they are almost disconnected because each and every bridge crossing the Trishuli River was collapsed on Wednesday. So now government has decided to make some temporary arrangement so that the people who are stuck there in the another side of the Trishuli River, they can travel through this temporary trolley to the city side so that they can get some medical facility or some other emergency situation. So this arrangement has been made, and probably by today evening or tomorrow morning, this temporary bridge will be completed and people can cross this Trishuli River through this temporary bridge. So it will take around many months or probably years to return back to the normalcy, but now till that time, government is trying to give some relief to the local people, and this is one of the example of the relief given by Nepal government. With my camera person Biren Saini Ranveer, NDTV Nuwakot, Nepal.
2: मेरे साथ इस वक्त रसुआ जिले में हम मौजूद हैं, और मेरे साथ जीवन है. जीवन अपनी बहन को खोज रहे हैं. उनकी बहन शाहप्रुबेसी में एक दुकान चलाती थी, और सैलाब के बाद से, बाढ़ के बाद से वो गायब हैं, लापता हैं. उनकी खोज खबर करने के लिए जीवन जमीन आसमान एक कर रहे हैं. उनके जीजा जी भी साथ में थे, वो सकुशल बच गए, उनको कुछ नहीं हुआ. और अब जीवन के लिए अगला लक्ष्य यही है कि अपनी बहन को ढूंढना. ये जो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो दुंचे में हेलीकॉप्टर्स जो शव ला रहे हैं, उन्हें इसमें रखा जा रहा है वहाँ से रिकवर कर कर. तो जीवन को लगा कि वो आके यहाँ देखें, लेकिन यहाँ पर सारी बॉडीज़ को बॉडी बैग्स में रखा गया है, और यही कोशिश है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व करके रखा गया जाए, ताकि जीवन जैसे लोग जो हैं, जो अपनों को ढूंढ रहे हैं, वो आके एक बार पहचान कर पाएं. लेकिन जीवन, आप अंदर गए, देखा भी आपने, लेकिन आपको लगता है कि आपको बॉडी बैग खुलवाना है, अब क्या
3: नहीं,
2: फैसला लिया
3: है? संभव नहीं है ना, वो इतना दिन हो गया है, वो पहचानने के लिए कुछ रखा नहीं है ना, वो सब कुछ खत्म हो गया है. वहाँ पर कुछ बॉडी के वो पार्ट्स कुछ भी पहचानने के लिए लायक नहीं है ना, इसलिए वो देखना मुश्किल हो रहा है, पहचानने के लिए मुश्किल हो रहा है।
2: तो आपको पता है कि जो सरकार है उन्होंने कहा है कि डीएनए टेस्ट भी हो सकता है?
3: हो सकता है।
2: तो आप वो करवाना चाहेंगे?
3: हाँ, करवाना चाहिए चाहिए, ये अनिवार्य है, ये डीएनए टेस्ट अनिवार्य होना चाहिए था ना, क्योंकि लोग वहाँ से अपने आदमी के लिए कैसे पहचानेंगे, वही एउटा आधार है ना, और तो कुछ नहीं है, पहचानने के लिए चेहरा नहीं है, उसके लिए तो डीएनए टेस्ट करना एकदम जरूरी है, बहुत जरूरी।
2: तो आप करवाएंगे डीएनए टेस्ट?
3: हाँ, करवाएंगे।
2: और आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि जो यहाँ शव हैं वो हैं या फिर आगे जो बह गए हैं उसमें हो सकते हैं?
3: हो सकता है, कुछ पता नहीं है ना, वही वही उसके उसके लिए तो लापता कहते हैं ना, यहाँ पर है या नहीं है, वही रास्ता पर ये खोला में बगा रहा है, ये कुछ पता नहीं है।
2: जीजा जी को अभी जाके घर में क्या कहेंगे?
3: देने के लिए कुछ पता ही नहीं, क्या कहेंगे, मिला नहीं।
2: वो ठीक है?
3: ठीक है,
2: उनकी तबीयत ठीक है। उनको चोट आई थी?
3: नहीं।
2: आप कहाँ थे? आप बहन के साथ थे?
3: नहीं, मैं घर पर था।
2: आप घर पे थे? आप भी सापरू बेसी में रहते थे?
3: नहीं, मैं थोड़ी दिन पहले मैं बीमार हो गया था, इसलिए मैं घर में रेस्ट कर रहा था। उसके बाद कॉल आया यहाँ से, दीदी नहीं मिल रहा है, मैं तो बस गया हूँ, ऐसा कह के जीजा जी ने फोन किया, लेकिन उसके बाद कांटेक्ट भी नहीं हुआ है, इतना से 7 डेज हो गया है लेकिन कांटेक्ट भी नहीं हुआ।
2: तो आप अपना सैंपल अगर देंगे डीएनए का और जो उन्होंने रखा हुआ सैंपल तो मैच करेंगे, तो अगर आप भाई बहन हैं और मैच हुआ, क्योंकि भाई बहन का मैच होता है, तो उससे फिर आपको पता चल
3: जाएगा, वही
2: एक तरीका है
3: और कुछ नहीं है।
4: We are right now inside the Disaster Command Force Center, which is set up by the Nepal Police. So this is the center which actually coordinates the flood relief operation in the entire Nepal. You can see out here, this is inside the police headquarters in Kathmandu, and there are different desks for different purpose. You have desks for missing persons, you have desks for the relief and the coordination, the desks for doing various other coordination job which the Nepal Police is doing out in the field. So here the senior officials are all parked here. So these are the live visuals which this control room receives, and they pass on this information to their men on the ground who actually coordinate further as far as this disaster relief is concerned.
5: There are 8 desks for coordinating rescue, missing, dead body management, and for the transportation management in every 8 job specialized, especially medical assistance team.
4: So these are the you have a team for medical assistance.
5: Search and rescue team with drones. Yeah, with drones and dogs, trained dogs as well.
4: Canine dogs.
5: Canine search and rescue teams, legal assistance and scene documentation terms. Yeah, and.

0: that it could breach, sending a new surge of water downstream. On August 28th, rescue operations in Nepal and Tibet had to be halted for some time after the upstream dammed lake started overflowing. There was fear that continued overflow could trigger another flash flood or mudslide. There has been recurring environmental shocks in this fragile zone. The UN has counted 21 of the 2,000 glacial lakes in Nepal as potentially dangerous. In July 2025, a glacial lake had burst its barrier in Tibet, sending a wall of water surging down the Bhote Koshi River. It destroyed the Nepal-China Friendship Bridge at Gerong and took the lives of 17 people. Upstream, the Lende Khola has also flooded twice in a period of a year and a half. The signs are ominous as the Himalayas, spanning Nepal, India, China, Bhutan, and Pakistan, are warming twice as fast as the global average. This means that there is increased risk of avalanches, landslides, and floods, posing a rising threat not just to northern Nepal, but to millions of people living downstream all the way to India.
1: Meanwhile, NDTV's Vishnu Som and Manogya have taken a chopper ride above Nepal's worst affected zones. This is the first ever aerial view of the Nepal tragedy. Take a look.
2: JCB machines lagatar kaam kar rahi hain aur ye zameen par Tishuli ilake mein kaam kar rahi hain, nadi mein aur helicopter ke zariye jab utarna padta hai to सिर्फ इतनी सी जगह मिलती है हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए और उसी इलाके में ये काम करके इन्हें निकलना भी पड़ता है। समय चंद मिनटों का होता है और उसमें ही सब काम करके बैठ के निकल जाना पड़ता है। मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन अश्विनी है। अश्विनी लगातार ज़मीन पर काम कर रहे हैं हमारे साथ इन मुश्किलों के बीच में। अश्विनी ही हैं जो मेरे साथ आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अश्विनी ही हैं जो लगातार हमारे साथ इन मुश्किल इलाकों में काम कर रहे हैं और ये सारी तस्वीरें आप तक अगर पहुंच रही हैं तो मेरे कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा की वजह से।
1: ऑलराइट, we are showing you the aerial visuals of the after impact of the Nepal flash floods, the tunnel rescue operations which are in critical phase. Remember, NDTV's team and reporters are on ground zero, and this is the first aerial image of the after impact of the flash floods by my colleague Manogya Loiwal. Take a look again.
2: JCB machines lagatar kaam kar rahi hain aur ये ज़मीन पर त्रिशूली इलाके में काम कर रही है नदी में और हेलीकॉप्टर के जरिए जब उतरना पड़ता है तो सिर्फ इतनी सी जगह मिलती है हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए और उसी इलाके में ये काम करके इन्हें निकलना भी पड़ता है। समय चंद मिनटों का होता है और उसमें ही सब काम करके बैठ के निकल जाना पड़ता है। मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन अश्विनी है। अश्विनी लगातार ज़मीन पर काम कर रहे हैं हमारे साथ इन मुश्किलों के बीच में। अश्विनी ही हैं जो मेरे साथ आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अश्विनी ही हैं जो लगातार हमारे साथ इन मुश्किल इलाकों में काम कर रहे हैं और ये सारी तस्वीरें आप तक अगर पहुंच रही हैं तो मेरे कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा की वजह से। जेसीबी मशीन लगातार काम कर रही हैं और ये ज़मीन पर त्रिशूली इलाके में काम कर रही हैं नदी में और हेलीकॉप्टर के जरिए जब उतरना पड़ता है तो सिर्फ इतनी सी जगह मिलती है हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए और उसी इलाके में ये काम करके इन्हें निकलना भी पड़ता है। समय चंद मिनटों का होता है और उसमें ही सब काम करके बैठ के निकल जाना पड़ता है। मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन अश्विनी है। अश्विनी लगातार ज़मीन पर काम कर रहे हैं हमारे साथ इन मुश्किलों के बीच में। अश्विनी ही हैं जो मेरे साथ आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अश्विनी ही हैं जो लगातार हमारे साथ इन मुश्किल इलाकों में काम कर रहे हैं और ये सारी तस्वीरें आप तक अगर पहुंच रही हैं तो मेरे कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा की वजह से।
3: Well, as we go back towards Kathmandu, there's a helicopter right there. It's got dead bodies slung underneath it, is what we're told. The mortal remains of people who've lost their lives being taken by helicopter right up there to our side. It is unreal, but this is the only way in which the remains of those who've lost their lives can be taken back to a central point where they are located. Well, as we go back towards Kathmandu, there's a helicopter right there. It's got dead bodies slung underneath it, is what we're told. The mortal remains of people who've lost their lives being taken by helicopter right up there to our side. It is unreal, but this is the only way in which the remains of those who've lost their lives can be taken back to a central point where they are located. I'm Vishnu Shom. I'm in a helicopter and we're just returning to Kathmandu from the Nepal boundary with China. This is the boundary which really took the biggest impact of the floods coming in. As we flew up this river valley, we noticed that in many areas there was nothing at all, and we needed the colonel flying this helicopter to actually tell us that many of those were fully occupied areas, unlike areas such as Trisuli and other areas where we've been reporting from. There are parts of the river valley over here, north of the Trishuli, which absolutely have nothing. It's been washed away. There isn't a single remnant of any building.
1: Well, NDTV is the only channel giving you the aerial view of the after impact of the flash floods and the mudslides there in Nepal. We'll continue to track that very closely. But for now, slipping into a very short break.

0: Economy grew by 7.8%, even as it exceeded, and in fact, it exceeded all expectations, including that of the RBI's estimates as well. Now, this growth rate positions India as the world's, as I said, the fastest growing economy. I'm going to first play out exactly what the Prime Minister said when these numbers came out, and then we get you some political reactions on it as well.
1: Deshwasiyon ko bahut bahut badhai. 7.8% growth. देश खुशियों से भर गया है, लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है। उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। दूसरी तरफ भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना है, हमें बढ़ना भी है, और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है। स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए, और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे। हमारी युवा पीढ़ी के सपनों को हम आज अपने परिश्रम से साकार करके रहेंगे, और इसलिए आइए देशवासियों, हम पुरुषार्थ में कोई कमी न रखें। हमारी नीति सही है, हमारी नीयत साफ है, और 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति आज एकजुट होकर के देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। आइए खुशियां भी मनाइए, संकल्प कीजिए, और संकल्प को सिद्ध करने के लिए मेरे साथ चल पड़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
0: All right, let's get in Vasudha Venugopal, my colleague and in NDTV's political editor. She's got the pulse of Indian politics, which frankly, Vasudha, is now squarely focused on how fast is the Indian economy growing.
2: Absolutely, Gauri. In fact, you'd understand this better than me. This has become a debate about India's state of economy because the Congress, feels that it's important to look beyond numbers, while the BJP says that, you know, the Prime Minister himself saying that, you know, this the numbers, the growth that we have registered in the April and June quarter is a reflection of how resilient Indian economy is in the midst of all the crisis. The timing of this is specifically important because India has just witnessed protests by Gen Z. Congress party says that, you know, if the numbers are so good, then why are there exam paper leaks, and what about jobs, and what about cost of living? While the Prime Minister has made it very clear that there is a political messaging in there, he's saying that, you know, there are naysayers, there are doomsayers, and these are people who are whose intent is to bring down India, while the numbers are speaking otherwise. And he also goes on to say that the center's policies and intentions are on the right track, and that, you know, people of India not just need to celebrate but also need to stay committed on this line of growth.
0: All right, I'm going to leave it there. Thanks much, Vasudha, for joining us with that perspective. And in fact, let's play out some of those political reactions for you to really get a sense of just how far the entire politics of Indian economy has gone. Take a look at the opposing two voices.
3: पहले तो कहते हैं कि साहब एक क्वार्टर की जीडीपी देखो और तालियां बजाओ, फिर कहते हैं सोना मत खरीदो, बड़ी शादियां मत करो, खुद विदेश में बैठे हैं, देश वालों को कह रहे हैं कि विदेश मत चले जाओ, पैसा बचाओ, और 80% इस देश के लोग मुफ्त राशन पर निर्भर हैं, तालियां बजाओ, तालियां बजाते रहो, बाकी सब सुनते रहो। निराश होना अलाउड नहीं है इस देश में, मोदी जी जब तक हैं कुछ भी हो मार खाते रहो, लेकिन चेहरे पे शिकन मत लाओ, क्योंकि शिकन साहब को पसंद नहीं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात.
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
5: अरे मेरे राजा.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है
3: कुछ इससे भी अनोखा
2: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।

0: उनके पुरुषार्थ के लिए एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। दूसरी तरफ भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना है, हमें बढ़ना भी है, और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है। स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए, और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे। हमारी युवा पीढ़ी के सपनों को हम आज अपने परिश्रम से साकार करके रहेंगे, और इसलिए आइए देशवासियों, हम पुरुषार्थ में कोई कमी न रखें। हमारी नीति सही है, हमारी नीयत साफ है, और 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति आज एकजुट होकर के देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। आइए खुशियां भी मनाइए, संकल्प कीजिए, और संकल्प को सिद्ध करने के लिए मेरे साथ चल पड़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
1: पहले तो कहते हैं कि साहब एक क्वार्टर की जीडीपी देखो और तालियां बजाओ, फिर कहते हैं सोना मत खरीदो, बड़ी शादियां मत करो, खुद विदेश में बैठे हैं देश वालों को कह रहे हैं कि विदेश मत चले जाओ, पैसा बचाओ, और 80% इस देश के लोग मुफ्त राशन पर निर्भर हैं, तालियां बजाओ, तालियां बजाते रहो, बाकी सब सुनते रहो। निराश होना अलाउड नहीं है इस देश में, मोदी जी जब तक हैं कुछ भी हो मार खाते रहो, लेकिन चेहरे पे शिकन मत लाओ, क्योंकि शिकन साहब को पसंद नहीं। मुझे बताइए ये 7.8 जो बोल रहे हैं, बहुत बड़ा सेक्टर इस देश का, सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है? एग्रीकल्चर। उसको क्या लाभ हो रहा है 7.8 का, इसका जवाब दीजिए।
2: जनवरी फरवरी में पूरा गल्फ क्राइसिस शुरू हुआ था, तेल की समस्या थी, सप्लाई चेन की समस्या थी, दुनिया में अनिश्चितता थी, देयर वाज ग्लोबल अनसर्टेनिटी एज वेल। उसके बावजूद भारत की इकोनॉमी 7.8% आई है, तो आज मैं बहुत अभिनंदन करता हूं भारत के इकोनॉमिक मैनेजमेंट का, मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, समझदारी और उनकी लीडरशिप का, पूरे वित्त विभाग के प्रबंधन का, वित्त मंत्री जी का, सबों का अभिनंदन।
3: Joined by R.P. Singh of the BJP, Nishant Anand of the Congress Party is also here with us. Shubhamai Bhattacharji, Consulting Editor, Business Standard is here with us. And Mithali Nikore, Founder and Chief Economist of Nikore Associates, also joining us now. Thank you all of you for being part of the show. Let me start with you, Mr. Singh. The Prime Minister directly has attacked Rahul Gandhi, and you know he has also used this phrase, a jhoot ki goonj. Now, this is becoming a political battle because it's about who gets to define what the state of Indian economy is. The Congress Party is saying, where are the jobs? The wages have sort of like really stagnated, especially amongst white collar workers, and the cost of living is high. So you need to answer that. How do you sort of respond to those allegations?
4: Well, let's start with the cost of living first. The economic growth, the GDP was 4.5% in 2012-13 and 13-14. This is a data and figure of the Government of India. And the inflation was in double digit, 11-13%. So, what are the figures? Today, it is the GDP is almost 7% plus, and inflation is 4 point some percent, I mean, which has just grown up a little bit.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला।

0: डिशेस हेल्दी एवरीडे।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
4: अरे मेरे राजा,
5: सबका

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन ना बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब ना बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन, रंग बना रहे
1: बोझे पेंट्स, रंग बना रहे।
2: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

वॉन्ट टू टेल हिम, ही वॉज टेलिंग कि भाई इतने लोगों को फ्री क्यों दे रहे हो. अरे वी आर गिविंग सो दैट द मनी इन देयर पॉकेट शुड बी यूज फॉर